0: नहीं नहीं नहीं रक्षति दुःखं करणे नहीं नहीं रक्षति दुःखं करणे
1: Thank you.